सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरिन को आ सिंघरिय पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो।

सगल समग्री तुम रह सूत्र तहारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउन दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। बोलना जी जिन्ना

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

कै सिमरन कमल मिंगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहुकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन

उबारे गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बारि व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया प्रसाद सैन मुखिया प्याव बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्स ले हो तव नानक सीजै जेह प्रसाद तारु पर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जेह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमला जेह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साख बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसहे त्यांग वर संग रचना

ने बहावे कहा बुझारत बुझाए डोरा निस कहे तो समझाए पोरा कहा बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय।

के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन तन कुटाम सुबाया मिथ्या हाँ मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असब वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रहोह मोह अभिमान मिथ्या शिव पर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या पर दृप को हिर है मिथ्या नेत्र पेख पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर्व कार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पर्व कार मिथ्या बाह लेद विकार बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आर जा साज बिना कहे होवत सूचा

मरे, जिसके अंतर बसे निंकार तिसकी सीख तरे, संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नान गुण जन चरण प्रात करो बेनती, पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया पहमाने, आपे आप आप करतन मेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियाणम सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत, जिस भाव तिस लै लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए।

रतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के सांगे कुपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ मान समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग व्रत रास पंचा साध संग हो सब की रेण साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कत हूं तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते पहने साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न

चा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुराना पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी केन्द्र हिटे अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नाम सिकार नानक परस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या

श्लोक उस्तद करे अनेक जन अंतर पार वारुणान कृतन प्रवृति बहु विदयन प्रकार स्पदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैती सुवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी।

आवे, कहो मन ते क्या हुए आवे, जो तिह पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए तो सब कहले, जो तिह पावे सोई करे।

संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी माहकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के

सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न लागे कोई उस्तद मन में करने कार कर मन मेरे सदा सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेघा गुर का रंग सासंग मिणसे सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाव जपिये हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दुर्गे नानक उजल मथा मृभागी तेह जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान होते सुखी एको एक एक पछाने ये तू कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन है निरंजन जाने गुरप्रसाद अपने आप सुजय तिसकी जान हो त्रिस नाम बुझे

है। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कौ कहते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब कहे मूल नानक, सो सूखम सोई अस्थूल। नह किस जन्मे नह किछ मरे, आपन चलते आप ही करे। आमन जाम दृष्टन दृष्टाग्ञाकारी, धारी सब सृष्ट।

जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सशोभावंत सगल संसार उदरै तन मंत्र प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख सारण

रूपवंत होय नाही मोहै प्रभु की जोत सगल घट सो है तनवंता होय क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दरबै

दाता तिस की शरण सर्व सुख पावे तिस कै दर्स सब पाप मिटावे। अवर सियान सगली छाड़ तिह जन की दू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नानू तिह जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिस का नाव तिस कै संग सिख उदराय नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख विड़ भागी है।

देवोहरनाम साधना की मांगो तो हर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर्ण सदा सदा प्रभु के गुण गाव सास सास प्रभु तुम्हें त्याम चरण कमल से लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सारू।

धारी सब साज उद पोता प्रसंग राज ता की कदम कहीं न जाए दूसरे हो तो सोजी पाए तसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए मा आ मिलाए लय रब सोए ओह धनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन कह सुहाव जन कह संग चित आवे नाओ आव मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रवे राध्या पूरा जा का नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु

सर्वे सवरचियो सियम भवगण गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परमराता भूतलख भेश अंगराग्न रंग जाके जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकुदाय काम आवृभमी अनुसत एक प्रगवतूत गर्भ गंजन सर्वजनादुर्वसूत अंगीन पंगनाथ एक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्व प्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वतेन भेक सर्व शास्त्र न जान जिरु रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भागत नेत कोट सिमित पुराण शास्त्र न आवहि वचित मदभार शांद त्वप्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार सन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निजन अनासाजन बाहु शाहन शाहु राजान राज बानान बान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बारंकारं कालान काल अनुभूत अंग अभ अभंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगुन प्रणाम निर्भय निर्काम अद्वत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वापर नाढ़ अनुदंड बाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग नरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दान्य चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भर्ती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न गाय अजन्मंग अजाहे न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश अदिश अदृश अकृश भगवती शांत त्व प्रसाद कथ थे कि आज देसा के आज बेसा के आ गंज कर्म है के आ भंज भरम है के आ बिज लोके के आ दित सोके के अवधूत भरण के विभूत करना है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ शोक भरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के शत्रुंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद अदेव के आप अपेव के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजाके रही मेरे हाके के पाक बैब के गैबल गैब के फुल गुनाह के शाहन शाह है के कारण करिंद के रोजी दहंद के राज करही में के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दिली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गाउण है के सर्वत्र पावण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र रीना है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र गल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र भूखा है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकल अलामे के साहिब कलाम है कुसल वजू है तमाम रजू है अमेश्वर सलाम है सलीगुत मदाम है गनीमल शगस्त है गरीबल प्रस्त है बुलंदुल मकान है जमीन जमाने तमीजुल तमाम है रजुल निधान है हरीबुल अजीम रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अपंग है अजीजुल निवास है गनीमल खराज है नृग स्वरूप है त्रमुक्त विभूत है प्रभुत प्रवाह है सुयुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है बेदी अनुभ है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तोल सलाम है सदैवल अकाम है निर्भाव स्वरूप अगाध है अनुभ अहंगाध रूपे ना स्वरूप अरंगी नामे त्रभंगी त्रकामे त्रिभरगम दरवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भाग्य सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है शुज है शूत है नरक प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक प्रवाह है सदैव सदा है भुग स्वरूप है प्रजुगत अनुप है नृक सदा है विभूत प्रभा है नुक स्वरूप है प्रजुगत अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजाय है अभाय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है बंध है भक्त है भरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है लिख है दिख है लेख है पेख है ठा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनत है सुनत है अजाद है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसाबल शांत द्वाप्रसाद नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रभंगी त्रकामे त्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताता न माता न जाता न पाता नृसाकं शरीर कै अमितो अमिक सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुन चराग है के काबल करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहिंद है करीमुल कमाल है के उसन जमाल है करीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल शिकन है रासुल फिकन है
कलंकंग प्रणाश समसुल निवास है अगंजुल गरीम रजाय ग्रही में समसुल सुबाह के साहिब ग्रह है के नरकंग प्रणाशंग बहसुल निवास है के सरवल गवन है मैसुल तमामुल तमीज है समसुल अजीज है परंग परमीश है समसुल अदीस है देसुल लेख है मैसुल अपेख है जमीन उल जबा है अमेकुल इमा है करीमुल कमाल के जुरत जमाल के चलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब सुरबे के मितो विभूत है के मितो प्रसाह है के आत्म प्रवाह है क्या चलंग अनंग के मितो अभंग मधुभार शांत प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सनाम हर नर खंड भर नर अमंड अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अपार गतमित उदार जल थल अमंड भंड जल थल महंद सुसुभ्यंत अनुभव नाथ तिर थर तुरास आदन बाहु एक सुदा ओंकार आद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चिचर नाम अंश जगात आज जिना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आठ थर मत ढीठ कर्म अनबरण अनंदाता महंथर बोल मना शांद त्व प्रसाद करुणालय है अर्घालय है खलखंड है बहमंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वबारण है तृतके तरण है जाके कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है प्रतेपर है करुणाकर है आ जपा जप है आ थपा थप है आ कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नरपनायक है सर्पायक है पपंजन है रगंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंक करते हैं सर्वा करते हैं कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो बान बाने नमो ग्रह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांग पंके पंगी सुरूपे अनंगी नाभेत्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत अजय अलाय अपय अभय अपु अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अगाम अगह अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेख्या करमंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सच दानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते अजाय गनीमे हरियंग करिंग करीमल हिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं भव स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजूते दुकारंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजूते दुकारंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाशाह दसवीं तवा प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख भ्रयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते करती मेरे एक रत्ती के माते मतंग अजर अजर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिया भारी भुजान के भूप पलेबद न्याव सीसना जात बेचारे ते भय तो कहा भय भूपतंत को नागे पाए पधारे जीत भराय सब देश दिशान को बाद ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुण जान के सुंदर हंस हिंसत ही राज हजारे भूत भगवान के भूत गौन करे नहीं जात बजारे श्री बस श्री भगवान भजे बिनंत गुंद के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम ने मनेक बसिखाए वेद पुराण गदेव ग्रां जमीन जवान समान के भिखाए पवन आहार जति जतार सब सुचार हजार को देखा श्री भगवान भजे बिन भुपदे करती बने गना लेखा शुद्ध सिवाहा दुरंद बहा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख लेना हालाएंगे तुर अरीर मरोर मवासन माते मदंगन मान मिलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा त्याग जहान निधान चलाएंगे वीर पार बटे बरे अर बचारी अवचारे सार की तार बशैया तोर दिस मिलिंद मवासन माते जान के मान मिलैया गाड़े गडान को तोड़ना हार सुबह तिन चक चार लवैया
साहिब श्री सब को सर नायक जाच कने एक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत भगवान च पैंगे जीव जिदे जल मैं थल मैं बल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातुन पापन के बह पुंज खपाएंगे सा संप्रसन फ्रै जग सतर सवय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात बजौन त्रिलोक राज कराएंगे कोट क्षनानक जातक दान एक संबर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्री पद गे पर सह भगत नर फेर ना देह तरेंगे कह भयो जो दो लोचन बूंद कै बैठ रो भग ध्यान लगायो नहात फरियोरिये सास समंदरन लोग पर लोग गवायो बास क्यों बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबह साम बितायो साच का हम सुन ले हो सबै जन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज रहे हो सर काहू लै लिंग लटकायो काहू लखनवाची दिशा मह काहू पशाह को सी सिरवायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजनता आयो कूर गिरया उर जाओ सब ही जग श्री भगवान को वेदना पायो कौ बुतान काउ पूजत है पास कौ मृतान काउ पूजनता आयो कूर गिरया उर जाओ सब ही जग श्री भगवान को वेदना पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पाशाह दसवीं कबे बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मंद रहे हमारा अपना जान करो व्रत बारा हमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ दह मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबै कर धारा मोर रक्षा निज कर दया करे सब बैरन को वास करे पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चौन चौन सदर हमारे मारी है आभात है मुझे भरे मरण काल का द्रासन भरे उजो सदा हमारे पछा श्री सुजू करियो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे साहिब संसाए प्यारे दीन मंदुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल बाय कर विषण प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दयान जशन बजायो

जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम ची तेरे। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी। सच हुक्म

ओडिया पिने अब साजे वा पिने रचे नौ दो एक रो साजी एक करा से निठो जाओ दाता करता है आप तो तुझ दे वह करे फसाओ तू जानो ही सब छे दिले से जित कबाओ कर आसन निठो जाओ कर आसन निठो जाओ।

बोलना जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद राव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिह जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताय। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए।

जाति पिहित मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतद बहुमूच बहुत सियाण जम का पहु ब्यापे अनक जतन कर त्रिसन ना तरापे पेख अनेक अगण नहीं बुझे कोट उपाव दर गय नहीं सिजय शूट।

मिथ्या तान तहन कुटाम सुबाया मिथ्या हमें ममता माया मिथ्या राज जोबन तहन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या राथ हस्ती असब बहुतरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता

कहत देह प्रसाद रे सगल छिद्र ढाक मन सरणी पर ठाक प्रभता कह देह प्रसाद रे को न पहुचै मन सा सिमरह प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानकता की भगत करे जे प्रसाद भूखण पहरी जय मन तिह सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असव तिसवारी मन तिह प्रभ को कब होना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसह त्याई तिसह त्याय जो एक अलख है ईहा उहा नानक तेरी रख है

ऐसो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ मान समानी। साध के संग अगोचर मिलाय, साध के संग सदा पर फुलाय। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग व्रत रस पुंचा। साध संग होय सब की रेण, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतहु तावे, साध संग अस्थित मन पावे।

देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कह काल दर्शन भेड़त होत निहाल साध कै संग कलुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सुहेला सा संग बिछरुत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै

संयोग। साध की महिमा वेदना जाने जेता सुनह तेता बख्याने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही पारपूर, साध की शोभा का नाहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा हुई ते उची, साध की शोभा मुई ते मुची, साध की शोभा साध बने आई नानक, साध प्रभ भेद न पाई श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सुबिन कोए, नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेव जैसे जल में कमल ले, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कव सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राय रंग कव लागे तुल पवान, तो

सदादेस ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायद आख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मद कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी काम तन पार नान ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता।

आमीन। संत के निंदक का सर्व रोग, संत के निंदक का सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तस का पी होए मोख। संत का दुखी सदा पवेत, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को

संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संत पावे ता लै मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी कदे काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थो था जो सास बिना मृतक की लोथा

हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम राख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उतद मन में कर निकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

कार्य में है आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीधिया गुर प्रसाद तत् सा बुझिया, जब देखो तब सब कह मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह कह जन में नह किस मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत राच थाप यू थाप। अविनाशी नाही कछ

करतो है। तनवंता हुए क्या को गर्भ है जाओ सब किस तिसका दिया दर्भ है। आत सूरज को कहावे प्रभु की कला बिना कहता हवे।

सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवे से तेहु गुण में जाको परमाहे जन्म मरे फिर आवे जाय ऊच नीच तिसके अवस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान।

न बूझ करत विचार। करते किमित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वृतिया। बिस्मन बिस्म पह बिस्माद, जिन बूझया तसाया स्वाद। प्रभ के रंग राजन रहे, गुर कै भजन पदार्थ लहे।

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सहस सियाण पलया न जाइये नानक ऐसा गुरबिड भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पदिया ने पूरा गुर ख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख है होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए

परदेसे पाओ चुका निरपाओ होए बसे सगल बेआद मन देखे नसे जिसका साधन कृपा धारी साध संग जमना मरारी थित पाई चुके भ्रम गमन सुन नानक हर हर जस रमन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने त्रित प्रभ आम बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एक सोए

भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोह पाए निमुख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय भसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो ने

नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाहे मेटे अहंकार, तेह जन को कोय न पम तरहार। सरयू पर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हार रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जस मन भसे सोहत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पहे अमरा पद।

मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आवाम परिपूर अंतर्गत जिस आम जनाए नानक ते जन आम बजाए। सर्वभूत आवृतारा सर्वनयन आपे खनहारा सगल समग्री जा का तना अपन जस आप ही सुना।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੈਂ ਮਿਟਾਵੂ, ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਬਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਤਕ ਅਨੰਤਾ ਨੇਕੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਦਾਖਰੀ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕਾਖਰੀ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜੀ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਅਧਾਰੂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰਹਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਿਸ ਬਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਸਰਮ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਿਤ ਸਿਧ ਨਾਉ ਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੋਧੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਾ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾ ਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਈ ਸੁਪਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗਿਓ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੀ ਸੁਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਰਬ ਕੈ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਬਨਾਸੀ, ਸਿਮਰਤ ਲਗ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸਦਬਲਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਮੁੱਖ ਸਹਾਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਪਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਤ ਚੁਨਕਾਰੀ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਯਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਿਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੀਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿਜ ਦਾਤੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨੀ ਚੌਂਕੁਟ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਗਲਾ ਆਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬਜਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਨਾਥੀ, ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਯੂ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਹ ਮਹਾ ਪੈਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੀ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੇ, ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਦਾਰੇ, ਅਣਕ ਪੁਣ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹਿ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰਹਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੀ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਈ ਸੁਖੀਆ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ, ਅਣਕਮਾਰ ਰੰਗ ਤਿਖਨਾ ਬਜਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕਾਵੇ, ਜੇ ਮਰ ਗੇ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮਨ ਸਦਾ ਤਿਆਈਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਆ, ਛੂਟਤ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਣਕ ਬਿਗਣ ਜਾ ਆਏ ਸੰਗਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਣਕ ਜੋਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਭਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਤੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ,
ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईया साधका संग जे मार का गणे जह न कोसा हर का नाम हा संतोसा जे पेंडे मैं अंध गबारा हर का नाम संग जयारा जहां पंते रेको नान संजानू हर का नाम तै नाल पिछानू जय मह पैंड तप्त बहु काम तै हर के नाम तुम्हें ऊपर शाम जय तेरे खा मन तुझे अकरखे तै नानक हर हरे अमृत बरखे भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हरे औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बबेक हर का नाम जन को मुख जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कुछ नाही बियोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को या प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सतानी हन हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राती सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरद बसे संत प्रताप दुरत सब नस संत का संग वड पागी पाईया संत की सेवा नाम ते आईया नाम तुल कशावर न हुए नाने गुरमुख ना पावे जन कोई सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सरब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग ब्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो में कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तोल राम नाम बिचारी नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौखंड पृथ्वी फिरे चर जीव महादास पीछर थी वह अगन मैं होवत प्राण कन कैसव है वर पुमदान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर सिर कटावे तो भी हम मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कुछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर दे छुटे गर्व गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन सार रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना बिखिया टरे जल तो वे बहु देह अनीत सुध कहां हुई काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊचे नानक नाम उदरे पतित बहुमूचे बहुत सियानप जम का पाओ व्यापे अनक जतन कर त्रिसना न त्रापे पेक अनेक अगन नहीं बूजै कोट अपाव दर गैने सीजै छूट सनाही उब प्याले मोह ब्यापे माया जाले अवर करतु सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाई नानक बोले सह सबाई चार पदार्थ जे को मांगे साज जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावै हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमै छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तां कै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान साध संग जां का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौ गणिया सब ते ऊंचा जां का मन हुई सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरू नाऊ निथावे को नाऊ तेरा थाऊ
नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आ प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते हुए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म शिष्ट धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया मैं उत्तम किरिया साह संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखाणी सगल थान त्यो उत्तम थान नानक जा कट बसे हर नाम सलोक निर्गुण आरे आने सोप्रभ सदा समाली जिन किया तिस चीत राखे नानक निबही नाली अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराणी कवन मूल ते कवन दिष्टाणी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन मैं जिन्हें उबारिया बार विवस्था तुझे प्यारे दूदे पर जो बन पूजन सुख सूद बिरद पया उपर सक सैन मुख अप्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु ना बूजै बख्श लिहो तो नानक सीजै जे प्रसातर उपर सुख बसै सुत परात मीत बनंता संग हसे जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्ते पवकर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़े अंध व्यापी नानक काढ़ लिहो प्रभ आपी आदंत जो राखन हारे तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नाम निद पावै तासी ओ मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टैल पव दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह पूलन हारे नानक राखन हार अपारे रतन त्याग कौडी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होमन सो दूर पराने छोड़ जाई तिसका शर्म करे संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तुए गर्त प्रीत पसम संग होए आंध कु मैं पतित बिकराले नाने काट लिहो प्रभ दयाले करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया छपश नाही किछ करे सपाया बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापै लोभ सवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कस्तर अथाह जाकै अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लिहो उड़न बहावे कहा बुजारत बूजे डोरा निष्कहिया तो समझे पूरा कहा बिसनपद गावे गोंग जतन करे तो भी सर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाउस गमन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सु आवे ना चीत जो बैराई तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसा नंद केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मन है प्रतीत काल ना आवे मूढ़ है चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महालोभ त्रोह याहु जगत बहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गतमित तुम ही जानी नानक दास सदा।

कबहू सर्ब के हो तरवाल, कबहू हुए बहे बड़ राजा, कबू पिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीर्त में आवे, कबहू पला पला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिम ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू हुए पंडित करे बखियान, कबहू मुन तारी लावे त्यान, कबहू तड़ तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रपावे तिमे नचावे, ज्योत सपावे सोई हुए, नानक दूजा अवर न कोई, कबहू साध संगत एहो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगासे, उस स्थान का नहीं बिनास, मन तन नाम रते करंग, सदा बसे पर ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सदक

गले अष्टपदी जिसके अंतर राज्य अभिमान सो नरकपाती होत सवान जो जाने मैं जो बनवंत सोवत विष्ठा का जंत आपस को करवंत कहावे जन मरे बो जोन परमावे तन भूमिका जो करे गमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हुई कर गरबावे त्रिन समानक संग न जावे बहुलस्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका हुई बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिनमा हुई जाए पसमंत किसे न बदे आप हंकारी तरम राय तिस करे खवारी गुर प्रसाद जक मिटाया अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हऊ तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अणक तपस्या करे हंकारे नरक सुर्ग फिर अवतार अणक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगह कऊ कैसे गर्व गवे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व की रिन जा का मन हुए कहो नानक ता कि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब इसको सुख ना ही कोई जाबे जाने मैं किस करता तब लव गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग तरमराई दे सजाए प्रभ किरपाते बंधन टूटे गुर परिषद नानक हउ छूटे सहज कटे लक ओठ तावै तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनग भोग बिख्या क्या करें ना तृप्तावे खब खब मरे बिना संतोख नहीं कौ राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसा प्राप्त होए कर्ण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावण करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसा जिस करे तैसा हुए आपे आप आप्रभ सोए जो किशकीनो सो अपना रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे कापे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप पदेसे समझे आप आपे रचया सब का साथ आप किनो अपन विस्तार सब किश उसका ओ करने हार उसते पिन कहो किश होए थान थनंतर एक कै सोए अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मैं आप मने अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर परिषाद किने बखयानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना पला पलत पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बखयानी पवित्र।

पर सोजन उदर नहारे संत के निंदा नानका बहुरे बहुरे अवतारे अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छूटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक मा पाए संत का दुखन मत हुए मलीन संत का दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे ना कोई संत का दुखन थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत का दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग ज्यों लवे संतन का दुखन सर्व ज्योन पाए संत का दुखन तिरगत ज्योन करमाए संतन का दुखन तृष्णा मैं जले संत का दुखन सब को शले संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन ने नचाए संत दुखी का थां को नाही नानक संत पावे ता ओ भी गत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निखिन टिकर ना पाई संत का निंदक महत यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते हीन संत का निंद दुखिया और दीन संत के निंद को सर्व रोग संत के निंद को सदा वियोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डन लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुखना सुखते टरे संत के दुखी को ना ही ठाऊं नानक संत पावे ता ले मलाए संत का दुखियत बीते टूटे संत का दुखित काज न पहुंचे संत का

के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइया, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइया, संत के दुखी की पूजे ना आयासा, संत का दुखी उठ चले नरासा, संत का दुख न त्रिस्ते कोई, जैसे पावे तैसा कोई हुए, पया कीर्तना मेटे कोई, नानक जाने साचा सोई, सब कर तिसके ओ करने हारे, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गरास, सब किश वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेले आप करने हारे, दूसरे कौन कहे बेचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़पागी नानक जन सही सलोक, तजो से आनप सुर जनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाई, अष्टपदी मन की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिसका दिया रहे अकाए,

दरिया नानक तिस बलहारी अष्टपदी टूटी गंडन हार गपाल सर्ब जिया आपे पितपाल सल की चिंता जिस मन माही तिस ते बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होई जेसो प्राणी लोचे कोई तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जा

प्रभ की जोत सगल कट सोही, तनवंता हुई क्या को गर्ब, जा सब किस तिसका दिया दरब, अत सूरा जे कौ कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को हुए बहेद तार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तुटे हो रोग, नानक सो जन सदा रोग, ज्यों मंदर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मनो अस्थमन, ज्यों पखान नावचर तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे, ज्यों अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, ज्यों महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूड़, नानक की हर लो चापूर, मन मूर्ख का हे बिल लाइया, पूर्व लिखे का लिखिया पाइया, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो किछ करे सोई सुख मान, पूला का हे फिरे अजान, कौन बसते आए तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताजे अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, लाद खेप संतै संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कहे सब कोई, मुख उज्जल हर दरगह सोई, एहो वपार विरला वपार, नानक तां कै सत बलहारे, चरण साध के तुई तुई पियो, अर्प साध कोई अपना जियो, साध की तूड़ करो इशनान, साध ऊपर जाइया कुरबान, साध सेवा वडपागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइय, अनक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गई संतां दरियाया, सर्व सुख नानक तै पाया, मृतक को जवालन हार, भूखे को देवता आधार, सर्व दान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नम दिया, नानक जो जन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, ते जने आवे हर पब चीत, भगत भगत सुनिया तो लोए, जा कै हिरदे को होए, सच करनी सच तां की रात, सच हिरदे सत मुख कैत, साचे दिर साचा कारे, सच वरते साचा पसार, पार बम जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता सलोगे।

सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मन की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किश कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बगसंद सा तेरे की चरनी पाओ नानके मन एह नराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परंजा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर नंद रूप मंगल सत जा कै सर्ब थोक सुनिया करता के राज मैं राज जोग मैं जोगी तमत पिशर ग्रासत मैं पोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरका किने अंत न पाया जाकी लीला की मत नाही सगल देव हारे अवगाही पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोए अपने सूत समत ज्ञान त्यान जिंदे जनदास नाम ते आवे सोए त्या गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊज नीच तिस कै स्थान जैस जनावे

नाना चलत करे खिन माहे, पूरे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसकै सब तिसकै ठाउ, जप जप जीवै नानक हर नाउ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान त्यान, नाम के तारे अगास पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पूरियां सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिसे अपने नाम ले, नानक चौथे पद मैं सो जनगत पाए, रूप सत जंका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जांकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जांकी रचना सत, मूल सत सत उत्पाते, सत करने निर्मल नर्मले, जिसे बजाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोई, नाम जब ताकी गत हुए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गाते, जिसके शिष्ट सु करने हार, अवर ना बूझे करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत सपावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बुझिया तिसे आया स्वाद, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के भजन पदार्थ लहे, ओ दाते दुख कटन हारे, जां कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वडपागे, जन कै संग एक लिव लागे, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आदि सचे जुगाद सचे, है पे सचे नानक होसे पे सचे, अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत आमन हार, आप सत सत सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सूरत सत सत जा सुनता, बूजन हर को सत सब हुई, नानक सत सत प्रभ सुए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करम तिन मूल पछाणिया, जां कै हृदय विश्वास पवे आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो हुए बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना, बस्त मैला बस्त गडाई, तां को भिन्न न कहना जाई, बूजे बूजन हर बबेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवको प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सा सा समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेव की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेव की आप अत राखे, ताकि गतमत कोई ना लाखे, प्रभ के सेव को ना पहुंचे, प्रभ के सेव के ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेव के दया दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल राखे, पसम करे लश्कर कुट लाखे, जिसका सासना काढ़ते आप, ताको राख दे कर हाथे, मान जतन करत बहु पाते, तिसके कर्तव्य बिरथे जाते, मारे न राखे अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोई, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, पी अमृते मन तंत्र पिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके सवर नहीं दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जाचे बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगता तम कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह समाए, जो होवा होवत सो जाने,
प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानियो तिसका गुण का एक न जानियो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उट ले हो मन तने अपना तिन जन दे हो जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसका दर सब पाप मिटावे अवर से अन्न पछगले छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन कै पूजो सद पैरा सलोक साते पुरख जिन जाने सत गुर तिस का नाओ तिसके संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करे पितपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिखे बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हटे सतगुरु सिखो नाम तन दे गुर का सिख वडपागी हे सतगुरु सिखा हलत पलत सवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आग्या मन मै सहे आपस को कर कछु न जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिस बिस्मय गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिसर दे हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जिया का दाटा आठ पैर पर ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मैं पर ब्रह्म एक के आप नहीं किस परम सास से अन बलया न जाइय नानक ऐसा गुर वड पागी पाइय सफल दर्शन पेखत पनीत पर सचरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर बचन करन अकाने मन संतोखा तम पत्याने पूरा गुराखो जंका मंत्र अमृत दिष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बबेक काहू बोल न पहुंचत प्राणे अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी निरहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंदन नित करें चरण कमल हिरदे सिमरै सत बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हरस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सुहोए उस पुर का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नमले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन मैं राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तैते नासे तब तो मैं ठाण वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरने उपदेशे पाओ चुका निरपाओ हुए बसे सगल ब्यादे मन ते खै नसे जिसका सतन कृपा तारी साध संग जप नाम मरारी तिथ पाए चुके परम गमन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगन भी ओही कला तारे जिन सगली मोही अपने चरिते प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय परगास साधक संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगले इशारे हरे हरे नाम कमावना नानके हो तन सारे अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाउ सब मीत बसारू चरण कमल रिद मह उतारू करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ हर तन संचो हो भगवंत
संत जना का निर्मल मंत, एक आस रखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चर कुंट उठतावे, सो तन हारे सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पलि करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवख दलाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोधो हर के नाए, दैद स्तावते आवे ठाए। ता को बिगड़ न लागे कोई, जा केर दे बसे हर सोए। कल तांती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन से पूर्ण हुए आस, भगत पाए आतम पर गास। तित घर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। इं रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक उपाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बांसत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लिपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कटंब अर बनंता, इनते कहो कौ तुम कवन सनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन सटकार। असहति रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पसारी। जिन दिए तिस बुझे ना बिकाना, नाम बिसार नानक पसताना। गुर की मातू लेहो एयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। आप जपहु अवरा नाम जपावु, सुनत कहत रहत गत पावु। सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरे उतर समैल, बिनस जाए होमे बिख फैल। होहे अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। साढ़ से अनप सगले मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सचे करो बिहार, ईहा सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एक को देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मन आह। एक सकै गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरे आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनक विस्तार एक ते पए, एक अराध प्रास्त गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरते फिरते प्रभ आए, परया तो सरनाई। नानकी प्रभ बेनती, अपनी भगती लाई। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूड़, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो।

एक आधार नानक मांगे ना प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हरस पावे बिरला कोई, जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साधका संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर परगास आन दिन लिवलाग, बड़े पागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख हुए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेव कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन मरण दुख परम गया, इच्छपुनी सरदा सब पूरी, राव रहा सदसंग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मलाए, नानक भगति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जो काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जो किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जो जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जो बिकते काडे, सो क्यों बिसरे जो अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जो बिकते काडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे, गुर पूरे तते हे बजाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपावो, भगत पाई तरिया संसार, बिन भगति तन होशी सार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बसराम, सगल दुख का होव तनास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम राचाओ, मन तन अंतर एही स्वाओ, नेत्र उपेख दर सुख हुए, मन बिकसै सा चरण तुई, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला कहो पावे संग, एक बस्त दीजे कर माया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहे आ सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत विशाल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतिपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राणाधार, जो जो जप सो हुए पनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण आरे नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु पूजन कापर संगीत, रसना जपते हर हर नीत, पली सुकरनी सोबा तनवंत, हिरदे बसे पूरन गुरमंत, साध संगे प्रभ दिहो निवास, सर्व सुख

जाप अष्टपदी जब अकार एक अशुना दृष्टिता पाप पुण तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्याप्त जब अपने आप पर ब्रह्म तब मोह कहा किसे होवत परम आपन खेल आवर्ती जा नानके करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गणी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कवन अवतार जब निर्गन प्रभ सह सबाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन न डरे कवन कत डरे आपन चलत आप करने हारे नानक ठाकरे अगमा पारे अबनासी सुखे अपने आसन तै जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किश हुए जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेका जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे अपने आप ही अचर जा नानके आपन रूप आप ही उपर जा जै निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैले कहूं क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्बाण तै कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तै शल शद्र लगत कहूं कीश

नहीं सुमार। जब अपनी शोभाया अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहा को चीन। जब अपने आप उरतारे, तो सगन अब सगन कहा बिचारे। जह अपने ऊचे अपने आपे नेरा, तै कौन ठाकरे कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानके अपनी गत जानो आप। जय अचल अशेद अपेद सुमाया, ऊहा किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश, तै गुण का नाही प्रवेश। जय एक भगवंता, तै कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप पत्यारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आप।

कौशो नर के कौशुरंग बसावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोचे तो नानक एक जह बिगते भगतै आप जह पसरे पसार संत प्रताप दुह पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहु बने कौत आपे कौत करे नंद चूज आपे रस पोगन निरजोग जिस पावे तिस अपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खलावे बेसमार थागनत तोला ज्यो बुलावो तो नानक दास बोला सलोग जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हारे नानके को पसरिया दूजा कै दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारे आपे एक आप विस्तार जांत सिपावे ता शिष्ट उपाय अपने पाने ले समाए तुम ते पिन नहीं किस कोए आपन सु सब जगत परोए जा को प्रभ जियो आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेथा नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंतर सब ता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुवा जिस मनो बसारे ते तजे अबरे कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास सदा

पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कै मन बसया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अनदन पूज है गुर कै पैर ए लोग सुखिए पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आप है मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का इह सवाओ आठ पैर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पुलत दुए लिहो सवारे राम नाम अंतर उतारे पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगा निबहे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर नया वह जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उबरे राखन हार त्याए निर पौ जपै सगल पौ मिटे प्रभ किरपाते प्राणी छूटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिरे उपर थाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेकत उदरत सृष्ट चरण कमल जा कै अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाले ता कै निकट न आवत काल अमर पए अमरा पद पाया साध संगे नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर किरपाते संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नाव निधे अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन मैं आकाश प्याल सर्व लोग पूरन प्रतपाल बन तन पर्वत है पर ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पानी बसंतर माहे चार कुंट दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओं गुर प्रसाद नानक सुख पाऊं वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोला आप अडोल ना कबहूं डोले सर्ब कला कर खेल लै खेल मोल ना पाईए गुण अमोल सर्ब ज्योत मैं जांकी ज्योत तारिहो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन माहे एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब तरम संत जना सुनो शुभ बचन सर्ब व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की एहो रहत सत बचन साधु सब कैत जो जो होए सोई सुख माने करन करामन हर पब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभते

साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरे, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे ना।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लईं ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंदनों सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दया वे ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़ी तन आरियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां श्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चमकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण नियोटियां दी ओठ न्यासरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है। आप जी ने अपार बख्शियां रहमतां बख्शिश कीतियां गुरसिख परिवारां नूं उद्दम अते उपराला बख्शिश कीता। आप दे चरणां दा ओट आसरा लैके आप दे दर करदे सेवक बीबी जी करमजीत कौर वल्लों अपनी भाबी जी परमिंदर कौर जी की तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते आप दे चरण परसे हन। सतगुरु जी रहमत करनी बीबी जी दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दे अरोगता की दात बख्श के कृतार्थ करना अंग संग सहाई होना शीस ते रहमतां भरे हथ रखना। आप दी दर घर दे सेवक एडविन ते बीबी जी संजनी कौर वालों अपने बच्चे ईशान अते शिवनाव दे 15वें जन्मदिन की खुशी अंदर आप जी दी चरणा दा ऊट आसरा लै सतगुरु जी रहमत करनी बच्चों के सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दीर्घ आरजा माता पिता दे आग्याकार मन नीवा मत उच्ची उच्च विद्या तंदुरुस्तियां दी दात बख्श के कृतार्थ करना सेवक परिवारां दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखना दरों करो नामदान सिखी सिदक भरोसे दी दात बख्श के कृतार्थ करना दर आईयां संगतां दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां परिवारां वल्लों बख्शियां दातां विचों आप जी वास्ते सुंदर रमाला हाजिर कीता सतगुरु जी अंगीकार करना सेवकां दे लोक परलोक पड़दे टकणे किरत कमाइयां च बरकतां कारोबारां च वाधे हर दीवान हर मैदान फतेह बख्शनी अंग संग सहाई होना कड़ा प्रसाद दी देख दर ते हाजर है प्रवान होए प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संग च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के सेवकां नूं किरतार्थ करो
ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਉਚਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਥਿਆ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਥਿਆ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀ ਬੋਲੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।